0: ना चाहते कैसे हैं आप सभी, आपका दिन कैसा गया। क्राइस्टचर्च में सुबह तो अच्छी मौसम थी पर अचानक से वापस वही बारिश, वही बेमान मौसम। पर चलो क्या कर सकते हैं, मौसम और इंसान को आजकल हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पर एक जो है जिनको आप भरोसा कर सकते हो वो रेडियो कहजे, जहां पर आपको अच्छे सॉन्ग हर फ्राइडे और सैटरडे को मिलेगा। जी जी कैसे हैं आप, बड़ी मुस्कुरा रही हो, क्या हुआ?
1: वैसे आप सबको एक और बार गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी, आपकी दुलारी, सीधी सादी बोली वाली आरजे जिपी और फीजी के नटखट खट्टे आप सबके फेवरेट आरजे क्रिश आपका रेडियो कहजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं। कृषि, आप मुस्कुराने की बात कर रहे थे, आपने जो आज टॉपिक ऐसा छेड़ दिया है शुरुआत करते ही कि मौसम और इंसानों पे भरोसा नहीं कर सकते।
0: सही तो नाम नहीं ना, मौसम पे भरोसा के, मौसम पे कैसे भरोसा कर सकते हैं?
1: और इंसानों पे भी लाइक सब पे उतना भरोसा नहीं कर सकते
0: हैं। नहीं, कुछ कुछ है, कुछ कुछ
1: पर सब पे उतना भरोसा नहीं करते।
0: आप तो काफी ऐसे लोगों को जानते हो ना,
1: आप पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है क्योंकि आप बड़े बेईमान रहते हो कृष जी। हमेशा
0: क्या कर सकते हैं, अब कहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ लेकर आप बहुत कुछ सीखते हो, तो हमने आपसे ये बिल्कुल अच्छी तरह से सीख लिया है।
1: बेईमान रहना,
0: बेईमान रहना।
1: वैसे आपने ये डायलॉग नहीं कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम कृष्णा कुछ सोच के
0: अच्छा
1: रखा होगा।
0: बताया उनको ना, सबका मुंह बंद हो गया था। कल मैं इवेंट में थे तो ऐसे लोग मजाक कर रहे थे कि ना ऐसे कृष्णा ऐसे थे, मैंने बताया कि हाँ मेरे बाबा माँ बाप ने मेरा नाम ऐसा रखा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको तो लेट डाउन नहीं कर सकता हूँ ना। एंड आई थिंक उसके बाद कुछ रिप्लाई नहीं होता है, सो इट्स गुड। पर चलो हंसी मजाक अपने जगह पर, अशोक की ओर हम देखते हैं। तो ये जो संडे शो है हम आप तक लेकर आ रहे हैं जुरिलो इनके सजने से, और इसके साथ साथ आज हमारे जो रामायण के स्पॉन्सर्स है इनसे भी बात करते चलेंगे, इनके बारे में बात करते चलेंगे। बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में हमारे रामायण स्पॉन्सर्स हमारे साथ और बाकी भी जितने स्पॉन्सर्स है हमारे साथ स्टूडियोज में शामिल हो जाएंगे। चले अभी के लिए कुछ नहीं, कुछ पुराने नगमे लेकर हम आ रहे हैं, इस गीत का मजा आप लीजिए और जब हम वापस आएंगे तब तक हम तैयार रहेंगे अपने रेडियो कहजे लाइव पे जाने के लिए। You're listening to Radio KJ Local only on
1: Plains Media 96.9.

0: वेलकम बैक टू रेडियो केजे लोकल. यू लिसनिंग टू अस ऑन प्लेन्स मीडिया 96.9. लगता है आपने हसीन आवाज कहा और नजर लग गई.
1: हाँ जी हाँ, चलिए पानी पी लीजिए. जी हाँ, जब तक जीवी जी पानी पी रहे हैं तो हम डेलिना अम्मा बाबल अमची सुगमानो एंड यस वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. सो जीवी जी, हम बात कर रहे थे रामायण जो आ रहा है डेट. अभी लोग पीपल आर टेलिंग अस द डेट.
0: जी अभी तक किसी ने बताया नहीं है, पर हम चाहते हैं कि हम हमेशा रामायण के बारे में बात करते हैं, संडे को बात करते हैं, हमारे पोस्ट में बात करते हैं. जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए कि रेडियो केजे लोकल का रामायण कौन से डेट को आ रहा है, कौन से डेट को हो रहा है.
1: जी हाँ बिल्कुल.
0: ओ माय गॉड, कीप सेइंग कि रेडियो केजे लोकल का रामायण कौन से डेट को आ रहा है.
1: आपके
0: कैलेंडर में प्लीज मार्क कर दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली हमारे परफॉर्मर्स, हमारे आर्टिस्ट, हमारे सिंगर्स, हमारे डांसर्स, जो भी हुए.
1: I love that one. Yeah, Dilish, Aliya, I have to talk to you. Yes, we'll have to talk to you about something else. That पिछली बार जब हम एक बेबी शावर कर रहे थे, and हमने कहा था कि एक रोमांटिक नगमा बजाना है, जो इन लोगों ने गाना बजाया था, वो गाना जब बजाएंगे, पर I don't know who selected that song.
0: Oh my God, so हम last week हम एक बेबी शावर कर रहे थे, हमारे प्यारे दोस्त हिरल और मीत जी का बेबी शावर कर रहे थे, and once again congratulations हिरल एंड मीत, इतना अच्छा न्यूज हमें देने के लिए कि इतनी अच्छी खुशखबरी है यार, बच्चा कौन नहीं चाहता है. और स्पेशली नन्ना सा छोटा सा प्यारा सा मेहमान जब आपके घर पे आए, उसकी जो खुशी है वो बात ही अलग है. वैसे सो हिरल और मीत ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, आपके आरजे क्रिश और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि उनके गेस्ट को एंटरटेन करने का. तो हमने सोचा कि चलो वहां पर बुजुर्ग है काफी सारे. आई फील इट वॉज अ वेरी ब्लेस्ड बेबी शावर,
1: वेरी गुड क्राउड, बट काफी लोग जो यहाँ से नहीं थे, मेजोरिटी ऑफ द क्राउड वेर फ्रॉम हैमिल्टन एंड आउटसाइड क्राइस्टचर्च.
0: पहली बार ऐसा हुआ कि हम क्राइस्टचर्च में कोई इवेंट के लिए गए और हमें ऐसा फील हुआ कि हमने ये चेहरे देखे नहीं है पहले, लाइक मेजोरिटी ऑफ देम, सो ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम आउटसाइड हैमिल्टन. एंड हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था और काफी बुजुर्ग थे, तो हमने सोचा कि चलो बुजुर्गों को साथ में रख के कुछ करते हैं. और हमारे जो दिलिश भाई है वो वहां उस दिन डीजे का रोल प्ले कर रहे थे. डीजे का रोल प्ले कर रहे थे और हमने कहा कि चलो बुजुर्गों से कुछ कराते हैं, हमारे एल्डर्स हैं, इतने रिस्पेक्टफुल हैं, इनसे कुछ कराते हैं, पर डीजे आप एक गाना बजा दीजिए इसके लिए. एंड जो गाना दिल ने चुना, वो गाना सुनकर तो हम

0: आई लव्ड इट आई लव्ड इट
1: हम पक्का बक्का रह गए यार, इतना परफेक्ट सॉन्ग कैसे चुना आपने?
0: जी हाँ बिल्कुल. तो उमा एंड आदित्य जी, आप भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. और विश वाज देयर मोर लव देन हेट अराउंड द वर्ल्ड. यस आई एग्री विथ यू दिलीश. सिर्फ ये जो आपने जो बोला है, यस सिर्फ अगर हम देखें कि लोग, वी आर सो मच इन अ बेटर प्लेस. अगर आप दूसरे कंट्रीज को देखें तो या मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ. फुली ये सारे जो कुछ हो रहा है ये बंद हो जाए. और आज हमारे एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही करीब दोस्त सुमित का हैप्पी बर्थडे भी है. तो सुमित, यू मस्ट बी बिजी विथ योर फैमिली सेलिब्रेटिंग समवेयर, बट आज डेफिनेटली हम प्रोग्राम में अगर आप आए तो आपको लेकर बर्थडे सॉन्ग करेंगे. अगर आप नहीं भी आए तो डेफिनेटली बर्थडे सॉन्ग.
1: एंड दोस हु ऑल नो सुमित भैया, मे बी पुट अ मैसेज इन द मैसेजेस. अगर आप नहीं भी जानते हो, हैप्पी बर्थडे सुमित डाल दीजिए. उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा कि रेडियो केजे लोकल पर हमारे जो लिसनर्स है वो उन्हें विश कर रहे हैं. तो बस एक छोटा सा मैसेज, हैप्पी बर्थडे सुमित.
0: जय. इसके साथ साथ रामायण जो हम लेकर आ रहे हैं एक डेट को, जो डेट हम आपको नहीं बताएंगे, ये डेट के सिल्वर स्पॉन्सर्स हैं. याद रखिए, इनको भी हम तय दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे. माया फूड्स 320 कैशल स्ट्रीट में इस वीक या लास्ट वीक हमने वहां से एक वीडियो लाया था. आने वाले दिनों में यू विल सी फ्यू मोर वीडियोस. आज इनके मीट पे कुछ स्पेशल से, तो 320 कैशल स्ट्रीट में आपके पास अभी भी टाइम है. क्लोज अराउंड 7:30. अगर आपने शॉपिंग नहीं किया, फिर अराउंड द एरिया हॉप इन, स्पेशल से बिल्कुल फायदा उठा सकते हैं. इसके साथ साथ जीवी जी, प्रॉपर प्रीटी बेंच टॉप्स अगर आपको चाहिए, आपको जाना है.
1: आपको लैमिनेटेड बेंच टॉप चाहिए, दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर एवर एंड एवर, आरके बेंच टॉप. सो या, इनके पास जाइए. अगर आप घर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कुछ है और आपको बेंच टॉप लगवाना है, तो डोंट फॉरगेट द नेम आरके बेंच टॉप.
0: जी हां, इसके साथ साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप करण जी भाई, कहां लॉस्ट हो आजकल? ना कुछ बालते ना कुछ मैसेज आता है, आप तो गुम ही हो गए. आचल सिंह जी, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं. चले आगे बढ़ते हैं. ब्रोंस स्पॉन्सर, यस, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जो आप रेंटल पे डालना चाहते हैं, या इफ यू आर योरसेल्फ लुकिंग फॉर रेंटल प्रॉपर्टी, व्रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हार्को, इनको जरूर आप याद कर सकते हैं. काफी लोग हमें मैसेज करते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी टू रेंट, और यू नो प्रॉपर्टी रेंटल किसी एक एरिया में ढूंढ रहे. तो डेफिनेटली ये आपका काम बहुत ही आसान कर देते हैं, क्योंकि दैट्स अ जॉब, यू नो. वो उनके पास काफी लिस्टिंग होते हैं जहां पर आपको एक अच्छा प्यारा सा प्रॉपर्टी मिल जाएगा. तो रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, हार्को को जरूर याद रखिए.
1: साथ ही साथ हमारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर, पहले वाले हमारे फ्राइडे शो के स्पॉन्सर भी है, एंड काफी अच्छा काम कर रही है जैस जी, टच एंड ग्लो. हम हर लेडीज को बोलते हैं टच एंड ग्लो ट्राई कीजिए फॉर योर ओन सेल्फ केयर. जो बोलते हैं सेल्फ केयर इतना इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल द लेडीज, अगर आपको ब्यूटीफुल फेशियल चाहिए, अगर आपके आईब्रोज, आपके लिप्स, सब कुछ आपको परफेक्ट चाहिए, तो गो टू टच एंड ग्लो जैस जी के साथ. साथ ही साथ साउथ इंडियन खाना खाने का अगर आपको मन करे, जैसे परोठा, पत्री, डोसा, बिरयानी, मीन करी, चिमीन करी, कडला करी, कप्पा, मीन, पुट, द लिस्ट गोज ऑन. तो आपको जाना है. अच्छा, कंटिन्यू करें.
0: I'm just imagining all this lovely food. Can you pass me the water, please?
1: पोदीचोर कुछ हो रहा है क्या?
0: Yeah,
1: में नजर लग रही है, लगता है.
0: हमें किसकी नजर लगेगी भाई. कंटिन्यू विद पोदीचोर.
1: नजरा साथ में लेके घूमते. पोदीचोर, पोदीचोर जाना है आपको फॉर रियल साउथ इंडियन केरला फूड.
0: जी हाँ, और इसके साथ साथ वेल, आज तो ऐसा मौसम नहीं था, पर मेजोरिटी टाइम लवली क्राइस्टचर्च में जब सनी वेदा हो जाता है. कल भी हमारी मुलाकात इनसे हुई है और बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हेल्पफुल है, जो हमेशा किसी भी फंक्शन, कोई भी धार्मिक काम हो, पर इसके साथ साथ इनका जो खुद का बिजनेस है जो आपको मिलेगा 25th of March को. याद रखें ICC का दिवाली रंगी हो रहा हूँ मैं. टॉकिंग अबाउट अंशुज रियल फ्रूट आइसक्रीम, अंशु आंटी जी हमेशा आप हमें सपोर्ट करती है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. हे अंकल जी, अगर आप भी सुन रहे हैं, आपको हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यू नो आप तो द बिगेस्ट पिलर फॉर अंशु जी है. तो अंशु रियल फ्रूट आइसक्रीम, अगली बार अगर आप एक अच्छे आइसक्रीम या टेस्टी आइसक्रीम की तलाश में, तो डेफिनेटली जा सकते हैं. इसके साथ साथ वी आर कंस्ट्रक्शन जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर कंस्ट्रक्शन जी, नीले जी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, कंस्ट्रक्शन के दुनिया में भी अपना नाम कमा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं धीरे धीरे. तो जी हाँ बिल्कुल, ये नाम जरूर याद रखिए, वी आर कंस्ट्रक्शन. प्रदीप जी का मैसेज आ गया फाइनली
1: जी. जल्दी से रीड कर लेती हूँ. प्रदीप जी कह रहे हैं राम सीताराम दोनों को एक बार फिर से. लगभग 3 प्रोग्राम मिस कर दिया क्योंकि बहुत बिजी था, लेकिन आज फ्री इस कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन उर्मिल की वजह से बस घर में बैठकर गरम गरम मजा ले रहे हैं. गरम गरम किस चीज का मजा ले रहे हैं?
0: चाय होगा या बिल्कुल.
1: एक गीत बजा दीजिए आज मौसम.
0: वो तो हमने ऑलरेडी प्ले कर दिया, बट अगला गीत में जरूर आप एंजॉय करेंगे.
1: आज हमने शुरुआत थी

0: आज मौसम बड़ा बेमान है से शुरू किया था प्रदीप जी, आप थोड़े से लेट हो गए पर आपके लिए एक दूसरा सॉन्ग जरूर बजाएंगे
1: जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेडियो के जे रामायण जो एक डेट को आ रहा है जो आप लोगों को पता है, ये इनका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। जी हाँ यस, ऐसे फंक्शंस में फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स होना बहुत जरूरी होता है। अच्छे फोटोग्राफर्स और अच्छे वीडियोग्राफर्स होना उससे ज्यादा जरूरी होता है। तो जी हाँ, वीडियोग्राफी के फील्ड में जब हम एक नाम को याद करते हैं, एक नाम लेते हैं, तो डेफिनेटली जेके इमेजेस जो जी का नाम काफी गूंज रहा है। रिसेंटली किसी से बात कर रहे थे हिंदे में कि जिस तरह से आप प्रोफेशनल, क्योंकि क्या होता है कुछ फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं कि दे माइट नॉट रिप्लाई, नॉट रिस्पॉन्स ना, स्पेशली आपके सर पे इतना कुछ होता है, पर यू वांट टू गो टू समबडी हु रिस्पॉन्स इन अ वेरी क्विक टाइम। तो जेके का ये फीडबैक आया है कि डिस्पाइट आई एम नॉट गोना नेम द फोटोग्राफर्स, पर जेके को जैसे ही मैसेज किया गया, जेके रिस्पॉन्सड वेरी क्विकली, हैड अ क्विक मीटिंग एंड ऑल सॉर्टेड आउट। सो जेके, हैट्स ऑफ टू योर प्रोफेशनलिज्म। इसके साथ साथ द अदर गाय वी टॉकिंग अबाउट पीपी प्रोडक्शन, ही इज द सेम अ फैमिली मैन हु रिसेंटली बिकेम अ डैड टू, बट इसके डिस्पाइट दैट ये मेक श्योर कि इनके जो कस्टमर्स हैं इनको ऑन टाइम प्रॉपर वीडियो, नाइस वीडियोस मिल जाए। तो दो नाम जरूर याद रखिए, जेके इमेजेस फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए पीपी प्रोडक्शन।
0: जी हाँ, और रिसेंटली हम हमारे थोड़े फोटोज, पुराने फोटोज और वीडियोज आकर कोई लाइक कर रहा था, तो याद आया कि पीपी ने हमारे इतने सारे फोटोज और वीडियोज लिए हैं पास्ट में, एंड ऑल आर सो टाइमलेस, लाइक इतना ब्यूटीफुल। तो वेल डन पीपी प्रोडक्शन, कहाँ है आप, हमने सोचा आप जुड़ जाएंगे, बट हाँ इंतजार रहेगा आपका भी।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: क्या वो बिल्कुल
1: इंतजार रहेगा। इसके साथ साथ चले आगे बढ़ते हैं, जब ऐसा कुछ लेकर आते हैं तो उसको प्रमोट करना, आज आपको पता है द बेस्ट प्लेस टू प्रमोट इज द मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया हैंडल्स प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। एक नाम क्राइस्टचर्च में जो बिगेस्ट सेलिब्रेशन लेकर आते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट दिवाली सेलिब्रेशन इन साउथ आइलैंड, और अभी 25th को ये होली सेलिब्रेशन रंगीवरम में लेकर आ रहे हैं। वी टॉकिंग अबाउट इंडियन सोशल कल्चरल क्लब, इनके साथ साथ DNZ गौरी जी हैज बीन वेरी हेल्पफुल।
0: I just want to say, Gauri, congratulations. Aaj Auckland Holi tha, 4,000 plus
1: people. Well done.
0: We are so, so, so proud of you, Gauri, for the amazing work, the hard work that you do. We've already saw your whole hard work in Vayuku Diwali, jis tarah aapne kiya tha. So, Gauri, once again, congratulations for a successful Auckland Holi.
1: जी हाँ, सरिता सिंह जी आप भी हमारे साथ जुड़े। सरिता जी आप कैसे हैं, आपका दिन आज कैसा गया? होपफुली यू आर फाइन, होपफुली योर फैमिली इज एवरीवन फाइन, गरम गरम मसाला वाला चाय के मजा ले रहे। जी हाँ इन प्रदीप जी, लुक आफ्टर योरसेल्फ, हमारी भी फैमिली फीजी में है। आई नो एट द मोमेंट जब हम देखते हैं सभी और सो डिफिकल्ट, कहीं पर युद्ध चल रहा है, कहीं पर फाइट हो रहा है, और कहीं पर एक कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक कर रहे, कुछ कंट्री पर यू नो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, फीजी में काफी जगह पर अभी वेरी वेरी बैड फ्लड फ्लेट, यू नो रास्ते बंद है, ऑल दैट। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ गाइस, हमारे प्रेयर्स में आप सभी है।
0: पता नहीं दुनिया में इतना लाइक दुख, दुश्मनी, दर्द, ऐसी चीजें क्यों भर गई है, लाइक क्यों लोग प्यार नहीं कर पा रहे।
1: जस्ट लाइक सभी जो ग्रंथ में प्रोफेसी है, चाहे फिर वो बाइबल हो या रामायण हो, गीता है, द वर्ल्ड विल कम टू एंड, एंड आई थिंक अभी जो हो रहा है वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन। तो एक दूसरे जब तक है एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम भाव से रहिए, एंड कुछ गिला शिकवा हो तो उसको दूर कर दीजिए, एंड ओनली स्टे इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड फ्रेम एंड स्टे विद पॉजिटिव पीपल। इससे क्या होता है, एक तो आपका लाइफ बेटर रहता है, क्योंकि नेगेटिव पीपल के साथ आप भी नेगेटिव हो जाओगे, देन आप भी खराब सोचने लोगोंगे।
0: एंड दूसरी
1: यू नो टेल मी अबाउट दैट ऑन माय इंस्टा।
0: हाँ, दूसरी कौन सा इंस्टा वाला
1: जो मेरे वीडियोस आते रहते
0: हैं। दूसरी एक चीज है, सोशल मीडिया बहुत ही डिप्रेसिंग चीज है, द रियलिटी बिहाइंड सोशल मीडिया जो है कि हाँ सोशल मीडिया हम बिजनेस प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं, अच्छे चीजों के लिए यूज करते हैं, बट सोशल मीडिया ऐसा भी होता है कि हम लोगों को डिप्रेस कर देता है, क्योंकि हम अपना लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते
1: हैं।
0: हाँ, दैट्स द वर्स्ट थिंग टू, हाँ हम वही रिपीट कर रहे जो आप बोल रहे हो, बट आप भी ये चीज ध्यान दीजिए जो भी सोशल मीडिया में है, जैसे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टिकटॉक में, ये चीज ध्यान दीजिए कि आप अपना लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करें, वही बेटर है। जो सोशल मीडिया में दिखता है वो हमेशा सच होना जरूरी नहीं है, शायद कभी कभी लोग सिर्फ अच्छी चीजें सोशल मीडिया में बताते हैं। सो अगर आप सोचते हैं यार क्रिश और जिबी का लाइफ, चलो एग्जाम्पल ले लेते, क्रिश और जिबी का लाइफ इतना परफेक्ट है, ओ माई गॉड इतना अच्छा है, ब्यूटिफुल कपल, ये वो करके, अगर आप अपने पार्टनर्स से वो एग्जाम्पल लेकर बोलते हो कि हमें जिबी जैसी पार्टनर चाहिए, हमें क्रिश जैसा पार्टनर चाहिए, एक बात याद रखो, आपको जो मिला है वो सबसे अच्छा मिला है, लाइक देयर इज अ रीजन क्यों आप उनके साथ हो।

0: क्यों हो. उसी तरह हर चीज में किसी के पास गुची का बैग है, किसी के पास प्राडा का, किसी के पास लुई विटॉन का, पर हम तो यार शीन और बाजार के बैग में भी खुश रह सकते हैं. यू नो इट्स ऑल वन एंड द सेम. सो यही कहेंगे कि आई थिंक कि हमें अपना लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए.
1: या आई एग्री, डेफिनेटली एग्री. और जब बात आती है इन सब को, तो लास्ट वीक हमने एक यू नो आई पुट बहुत सेल्डम मैं इंस्टा पे पोस्ट डालता हूँ क्योंकि आई एम सो मच ऑफ लिस्निंग टू पॉडकास्ट और मेरा काम ही ऐसे हैंड्स ऑन कि मेरे हाथ में फोन होते हैं. पर लास्ट वीक आई पोस्टेड अ वीडियो जहाँ पर हमने कहा था कि स्टॉप वंस अ व्हाइल एडमायर द नेचर, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, इट्स सो डिप्रेसिंग, इट्स सो लाइक इन अ लॉट ऑफ पीपल रिएक्टेड टू दैट. दैट मीन्स आप भी हमारे साथ अग्री हो रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत डिप्रेसिंग है. सो वंस अ व्हाइल डू दैट. आई डू दैट फॉर आवर्स. जैसे कल मेरे बच्चे का मैच था, सुबह 10 o'clock मैं घर से निकला, आई केम होम लेट नाइट और जब आया देन आई गॉट ऑन माई फोन फाइनली सीइंग कि दिन में किसका मैसेज आया. एंड टुडे अगेन वी वर बिजी.
0: कृष जी बड़े लकी है उस मामले में कि वो सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का सारा काम हम करते हैं रेडियो के लिए.
1: चलो सोशल मीडिया की हम बात करते हैं. वन पर्सन हु डज सोशल मीडिया सो वेल, टच एंड ग्लो जी अब हमारे साथ शामिल हो चुके हैं. यू डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब व्हेन इट कम्स टू प्रमोटिंग योर ब्रांड, प्रमोटिंग द पीपल. एंड आई थिंक जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया का कुछ गुड भी है, बेड है. एंड पीपल लाइक टच एंड ग्लो, दे आर यूजिंग इट इन अ way to promote good things. Yes, Sarita Singh, nothing is perfect, definitely I agree. Par kya kar sakte, zindagi hai, jeena hai. Aur iske sath sath agar ye mausam hai, barsat ka mausam hai, to aap ghar se bhi nikal aa sakte hain, par aaj ghar se mat nikliye kyunki thoda risky hai, par ghar ke andar rehkar aap zarur ye kar sakte hain. You're listening to Radio KJ Local, only on
0: Plains Media 96.9. And hum